0: पहले हम लोग नौ बजे
1: इस समय को साथ में जितू सुनचांदी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
2: रेडियो आदि खोला 105.4

नमस्कार नमस्कार नमस्कार ने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हूं साथ में सांगीतिक अभिवादन टकराव शो कार्यक्रम गांबसिका भाग्य को इस सुंदर चौधारी दिवाकालीन समय कार्यक्रम गांबसिका भाग्य को पर्खाई में प्रतीक्षा में रहने भएका तमाम तमाम लोकगीत पारखी संगे रेडियो पारखी मन को पर्खाई को घड़ी मेटाउन का सधैं का वर्ष जैसे आज अपनी घड़ी दिवसों को एक बजे आई सकता हमी को रेडियो सेट समक्ष उपस्थित भईस को बसाई में यहां के साथ में उपस्थित भईसकी छु आरती कार्यक्रम गांबसिका भाग यहां सांगद जिला को पहला आवाज सामुदायिक रेडियो आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज इंटरनेट अनलाइन मार्फत www.radioadikhola.org रेडियो आदि खोला .org लगन करें साथ ही हामीलाई हाम्रो पात्र एक साथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। दिवाकालीन समय में प्रस्तुत हुने कार्यक्रम गांबसिका भाग साता को 6 दिन अर्थात शनिवार बाहेक अन्य दिन फिनवार फिन बसाई के साथ में विभिन्न विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकाहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्दछौं। आज हामी कार्यक्रम गांबसिका भाकाको अन्तिम दोस्रो श्रृंखला बिहिबारीय श्रृंखलाको यस सन्दर्भ सायमा छौं। बिहिबारीय व्यवसायमा रहेर हामी दबहर समक्ष नयाँ पुराना लोकगीत भाकाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिने जमर्कमा जुटिसकेका छौं। यहाँहरूका व्यस्ततामा फुर्सदको समयमा जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेर पनि हामी सँगै रहनु हुनेछ यो विश्वास राख्दै यति बेलाको क्रममा हामी सुमधुर खालको भाकालाई जोड्छौं। सोही भाका हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामी सँगै रहनुहोला।

0: सुनत नजे छ
1: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: नमस्ते महोत्सवर के अपने गायक तिलक बमल्ला तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ चांगर जिल्लाको पहिलो आवाज आदिखोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदिखोला 105.4।

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: सुनिस न अहिले हाम्रो गर्नेमा 10 बजेको छ
2: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

को अवसर में TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर वन TCL इंस्पायर ग्रेटनेस।